0: आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और साढ़े 4 बजे भारतीय समय के अनुसार एक घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते प्यारे सुनने वालों, रेडियो आवाज ताजी की हिंदी भाषा की जारी है और आपका स्वागत है। हमारे प्रसारण में आप सुन सकते हैं स्थायी और विदेशी समाचार, ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां, विश्लेषण, विशेषज्ञों से बातचीत। आज की जिम्मेदारियां इस प्रोग्राम के दीते रामजोत प्रोड्यूसर शेर अली वाली शेर आपका समाचार भाग में स्वागत करते हैं और हम मुख्य खबरों से शुरू करेंगे। घंटे की मुख्य खबरें। ताजिकिस्तान और बेलारूस बहराष्ट्र चार रोधी सहयोग को मजबूत करेंगे। ताजिकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के उद्योग मंत्रियों के सत्र में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मंचों पर ताजिकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग पर विचार विमर्श किया गया। ये और दूसरी खबरें हमारे इस घंटे में। ताजिकिस्तान गणराज्य के वित्तीय नियंत्रण और भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी तथा बेलारूस गणराज्य में महाअभियोजन कार्यालय के बीच सन 2025-2026 के लिए सहयोग समझौते के कार्यान्वयन के संयुक्त कार्य योजना के तहत पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संबंध में ताजिकिस्तान गणराज्य के वित्तीय नियंत्रण और भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी ने जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान दोनों संस्थाओं के जिम्मेदार अधिकारी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष और इस प्रवृत्ति के रोकथाम में नागरिक समाज की भूमिका पर विचार विमर्श किया। ये भी रेखांकित किया गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई दोनों देशों की राजनीति की एक महत्वपूर्ण दिशा है और दोनों पक्षों ने इस क्षेत्र में अपने अनुभव भ्रष्टाचार के दौर को कम करने के आधुनिक तरीकों तथा समाज के अधिक भागीदारी पर विचारों का आदान प्रदान किया। साथ ही अंतर एजेंसी सहयोग को मजबूत करने, निरीक्षण सामग्री और आपराधिक मामलों पर व्यावहारिक सहायता प्रदान करने, संयुक्त कार्यक्रमों के आयोजन तथा अन्य सहयोग क्षेत्रों पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम के अंत में दोनों पक्षों ने कहा कि ताजिकिस्तान और बेलारूस के भ्रष्टाचार रोधी निकायों के बीच सहयोग उच्च स्तर पर है और इसके आगे के सुदृढ़ीकरण एवं विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। ताजिकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल ताजिकिस्तान गणराज्य के उद्योग और नई प्रौद्योगिकी मंत्री शेर अली कबीर के नेतृत्व में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के उद्योग मंत्रियों के बैठक में शामिल हुए, जो 4 जून को किर्गिजिस्तान के चोपोन आता शहर में आयोजित की गई है। इस संबंध में ताजिकिस्तान गणराज्य के किर्गिज गणराज्य में स्थित दूतावास ने जानकारी दी। सत्र के दौरान पक्षों ने औद्योगिक सहयोग के प्रमुख मुद्दों, स्थायी उत्पादन, श्रृंखलाओं के निर्माण, संयुक्त निवेश परियोजनाओं को बढ़ावा देने तथा आधुनिक तकनीकों के कार्यान्वयन और उद्योग के आधुनिकीकरण में सहयोग को मजबूत करने जैसे विषयों पर चर्चा की। ताजिकिस्तान के उद्योग और नई प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय देशों के बीच औद्योगिक और निवेश सहयोग के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है, जिनके पास विशाल संसाधन, उत्पादन क्षमता तथा वैज्ञानिक तकनीकी संभावना करेंगे। ये भी रेखांकित किया गया कि तजकिस्तान अपनी तीव्र औद्योगिकी करा नीति के कार्यान्वयन के तहत स्थिर और सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करा है तथा हाल के वर्षो में देश में औद्योगिक उत्पादन का दोगुना विस्तार हुआ है। इस संदर्भ में खनन और धातु उद्योग, धातुकार, वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण तथा उच्च मूल्य वर्धित उत्पादन क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तजिक पक्ष ने रणनीतिक खनिज संसाधनों, विशेष रूप से दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के निष्कर्षण और प्रसंस्करण में देश की महत्वपूर्ण संभावनाओं पर भी जोर दिया, जिनकी हरित और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के विकास के दौर में बढ़ती मांग है। बैठक के दौरान शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के औद्योगिक निवेश परियोजनाओं के लिए एक डेटाबेस यानी सूचना बैंक स्थापित करने के तजकिस्तान की पहल पर विशेष ध्यान दिया गया है। कार्यक्रम के तहत शिराली कबीर ने बिश्केक में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग प्रदर्शनी आलो टू ट्रेड इंडस्ट्री एक्सपो के उद्घाटन समारोह में भी भाग लिया, जिसमें 6 देशों के 90 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनी में तजकिस्तान की औद्योगिक कंपनियों के उत्पादों तथा देश के निर्यात और निवेश क्षमता को प्रस्तुत किया गया। असरा की राजधानी ईना में तजकिस्तान गणराज्य के ऑस्ट्रिया में असाधारण एवं पूर्णकारी राजदूत मनुचेर जोबिर और ऑस्ट्रेलिया गणराज्य के यूरोपीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संघीय मंत्रालय के राजनीति विभाग के निदेशक थॉमस म्यूलमान के बीच बैठक आयोजित हुई। तजकिस्तान गणराज्य के दूतावास के अनुसार बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच बहुआयामी तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों के विकास की संभावनाओं पर चर्चा की गई। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ढांचे के अंतर्गत सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार विमर्श किया गया। तजकिस्तान गणराज्य के स्विट्जरलैंड परिसंघ में राजदूत तथा जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में तजकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि शराफ शेरअलीजोदा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस के साथ मुलाकात की। तजकिस्तान गणराज्य के दूतावास के अनुसार बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र की वर्तमान प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान किया तथा तजकिस्तान और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच भविष्य में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने वैश्विक स्वास्थ्य और सतत विकास के समर्थन में संवाद और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को जारी रखने की अपनी तत्परता को भी दोहराया। तजकिस्तान गणराज्य के मजलिसी नुमाइंदगान मजलिसी ओली के अध्यक्ष गियासुद्दीन अशुरजोदा ने विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इस संबंध में मजलिसी नुमाइंदगान मजलिस ओली ने जानकारी दी। बैठक के दौरान ये कहा गया कि सार्वजनिक व्यय और वित्तीय जवाबदेही मूल्यांकन रिपोर्ट तजकिस्तान के लिए केवल एक अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन उपकरण नहीं है, बल्कि सार्वजनिक वित्त प्रबंधन की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करने, उपलब्धियों का आकलन करने और आगे के सुधारों की दिशा निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। ये भी उल्लेख किया गया कि पूर्ववर्ती यानी PEFA आकलनों के परिणाम बजट योजना, कोषागार प्रणाली के सुधार, सरकारी वित्तीय नियंत्रण को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक लेखा परीक्षा के विकास तथा बजटीय पारदर्शिता बढ़ाने जैसे व्यापक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण आधार बने हैं। इस वर्ष का PEFA मूल्यांकन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि पहली बार इसमें कई नए और महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। इनमें जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, जेंडर आधारित बजट निर्माण तथा स्थानीय स्तर के मूल्यांकन जैसे विषय शामिल है। ये भी रेखांकित किया गया कि तजकिस्तान की संसद देश के सर्वोच्च प्रतिनिधिक और विधायी संस्थान के रूप में सार्वजनिक धन के उपयोग पर संसदीय निगरानी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि संसद में प्रतिवर्ष केवल राज्य बजट संबंधी कानून के मसौदे पर ही विचार नहीं किया जाता, बल्कि राजकोषीय रणनीति, मध्यम अवधि के आर्थिक विकास की संभावनाओं, सरकारी व्यय की प्रभावशीलता तथा सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के परिणामों का भी गहन विश्लेषण किया जाता है। चीन जनवादी गणराज्य के बीजिंग शहर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मंच बीजिंग के सुगंधित पहाड़ियां का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न देशों के सरकारी निकायों, पर्यटन संगठनों और व्यावसायिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ये जानकारी समिति ने दी है। फोरम के दौरान ताजिकिस्तान गणराज्य की सरकार के अधीन पर्यटन विकास समिति के प्रथम उपाध्यक्ष रुस्तम खुलमतियों ने ताजिकिस्तान के पर्यटन क्षेत्र के प्रतिस्पर्धात्मक विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने विशेष रूप से पर्वतीय और पर्वतारोहण पर्यटन, पारिस्थितिक और सतत पर्यटन के विकास तथा पर्यटन अवसंरचना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया। फोरम के प्रतिभागियों को गणराज्य के अद्वितीय प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और मनोरंजन संसाधनों से अवगत कराया गया, जो यात्रा और सक्रिय अवकाश के लिए व्यापक अवसर प्रदान करते हैं। फोरम के दौरान ताजिकिस्तान गणराज्य की सरकार के अधीन पर्यटन विकास समिति के प्रथम उपाध्यक्ष रुस्तम खुलमतियों और चीन जवादी गणराज्य के सांस्कृति एवं पर्यटन उप मंत्री गाओ जोहोंग के बीच एक बैठक आयोजित हुई। दोनों पक्षों ने पर्यटन क्षेत्र में ताजिक चीन सहयोग के विस्तार की संभावनाओं, निवेश आकर्षित करने, अंतर संस्थागत सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों के बीच पर्यटन प्रवाह बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त पहलों के कार्यान्वयन पर चर्चा की। प्यारे सुनने वालों, ये थी समय की ताज़ा खबरें जो हमने आपको प्रस्ताव किया। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहें।

होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला घुंघटे में चलता है फिर भी है फैला चारों ओर उजाला होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला अरे होश न खुद

0: 39,400 विदेशी नागरिक देश में आए, जिनमें से 371,000 से अधिक पर्यटक थे। ये संख्या वर्ष 2025 के इसी अवधि की तुलना में लगभग 31% अधिक है। पर्यटकों की संख्या में ये वृद्धि पर्यटन विकास से संबंधित सरकारी नीतियों, बुनियादी ढांचे में सुधार, यात्रा प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तजिकिस्तान की पर्यटन संभावनाओं के प्रभावी प्रचार का परिणाम है। आज तजिकिस्तान अपनी अद्वितीय प्रकृति, सुंदरता, ऊंचे पर्वतों, समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत तथा अपने लोगों की मेहमान नवाजी के कारण हजारों विदेशी पर्यटकों के लिए एक आकर्षक पर्यटन स्थल बन चुका है। प्यारे सुनने वालों, ये थे हमारे टिप्पणी तजिकिस्तान के पर्यटन विकास के बारे में। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहे।
1: वतन, वतन मरहमत हमेशा खर्ज फर्ज हर कसास। वतन मरा बचाश तूतियाय खाकी तू बसास। वतन برای نسل ها چی واژه مقدس است، حیات تا به پا بود. زهی وطن، زهی وطن، خدات رهنما بود.

यद्यपि 20वीं शताब्दी के 20वें दशक में भी ताजिक कवियों ने भारतीय विषय की ओर ध्यान दिया, लेकिन केवल मिर्जो तुर्सुनजोदा की शक्तिशाली कलम ही वो दे सकी जो उस समय के सरल और उच्च शिक्षित ताजिक पाठक भारत के बारे में जानना चाहते थे। पिछले शताब्दी के 50 के दशक से हमारे देश में भारतीय लेखकों की रचनाओं का गहन अनुवाद किया गया है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि उन वर्षों में अनुवाद केवल रूसी भाषा के माध्यम से किए जाते थे, क्योंकि ताजिकिस्तान में अभी तक अपने स्थानीय अनुवादक नहीं थे जो भारतीय भाषाओं को जानते थे कि मूल भाषा से सीधे अनुवाद कर सके। इस प्रकार रूसी भाषा ने भारत और ताजिक भाषाओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। ऐसी स्थिति में ऐसे अनुवादकों की आवश्यकता थी जो अधिकतम सटीकता और चमक के साथ कलात्मक छवियों, विचारों और कला के काम की अन्य विशेषताओं को व्यक्त कर सके। उच्च योग्यता ताजिक अनुवादक जैसे कि शरीफ शराफ, मुलो खानदव, अब्दुल जलील वसीदजोदा, हसन इरफोन, रहीम होशीम, फुलोत तोलिस, हिकमत रहमत और अन्य ने भारत में अपनी समृद्ध और बहुराष्ट्रीय साहित्य में अपने हमवतन लोगों की बढ़ती रुचि को देखते हुए सिर्फ 30 साल सन 1950 से 1980 तक भारतीय लेखकों द्वारा 300 से अधिक कहानियों, उपन्यासों, परियों की कहानियों और कविताओं का रूसी से ताजिक में अनुवाद किया गया। निसंदेह सबसे पहले कलात्मक शब्द के प्रतिभाशाली और व्यापक रूप से ज्ञात स्वामी के सर्वोत्तम कार्यों का रूसी में अनुवाद किया जाता था और फिर युवा और निश्चित रूप से भारत के कवियों और लेखकों की रचनाओं का अनुवाद किया जाता था। ताजिक अनुवादकों ने भी इस परंपरा को संरक्षित रखा और इस स्मृत शस्त्रागार से सर्वश्रेष्ठ का चयन करने का अवसर मिला। पचास और साठ के दशक में रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, मोहन सिंह और ख्वाजा अहमद अब्बास की रचनाओं का सर्वाधिक अनुवाद हुआ। उपयुक्त लेखकों में रविंद्रनाथ टैगोर और प्रेमचंद की रचनाएं हमारे देश में विशेष रूप से लोकप्रिय थी और अभी भी है। टैगोर ने अपने जीवन काल के दौरान अपनी मातृभूमि और विदेश दोनों में अविश्वसनीय लोकप्रियता प्राप्त किया। सन 1961 में रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म की शताब्दी ताजिकिस्तान सहित पूरी दुनिया में व्यापक रूप से मनाई गई। महान भारतीय कवि, लेखक, विचारक और कलाकार, पूरे पूर्व में पहला नोबेल पुरस्कार विजेता, हमारे देश में पहले से ही प्रसिद्ध था। सन 1940 की शुरुआत में टैगोर की कहानी वन हैप्पी नाइट ताजिक भाषा में लेनिन्स वे पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाद में उनकी अन्य रचनाओं का अनुवाद किया गया। ताजिकिस्तान में सन 1961 को रविंद्रनाथ टैगोर का वर्ष कहा जा सकता है। लगभग एक साल तक टैगोर की रचनाएं और उनके बारे में लेख हमारे देश में प्रकाशित होते रहे। ये इस वर्ष था कि ताजिक पाठक अपनी मूल भाषा में काबुलवाला, मोहमाया, नोटबुक, प्रतिशोध, संदेह जैसे आदि लेखक की कहानियों से परिचित हुए। हालांकि सबसे बड़ी घटना ताजिकिस्तान का सांस्कृतिक जीवन सबसे प्रसिद्ध टैगोर के उपन्यास गोरा का अनुवाद था, जहां पाठक को सबसे पहले औपनिवेशिक भारत में भारतीय समाज के आध्यात्मिक जीवन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। नाटक बालिदान का ताजिक भाषा में अनुवाद और प्रकाशन किया गया था। सन 2006 में टैगोर की 19 कहानियों का पहली बार हिंदी से ताजिक में अनुवाद किया गया, जिनमें जाज, वन नाइट, दाहलिया, हेमंती, बिग सिस्टर, स्ट्रेंजर, सजा और अन्य शामिल है। अनुवाद हबीबुल रजाबफ, उस्मानव, रहमतुल्लोयेवा, सोलियेवा के साथ मिलकर किया गया था। इस संग्रह की प्रस्तुति दुशंबे के अलावा हमारे राष्ट्रपति इमाम अली रहमान की राजकीय यात्रा के दौरान 7 अगस्त 2006 को दिल्ली शहर में भी हुई थी। ये उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति इमाम अली रहमान और भारत के विदेश राज्य मंत्री श्री अहमद व्यक्तिगत रूप से इस पुस्तक के प्रस्तुतिकरण समारोह में उपस्थित थे। ये भारतीय प्रतिभा के प्रति आध्यात्मिक सम्मान का एक और प्रमाण है। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं को पढ़कर हम भारत के बारे में, इसके मेहनती और शांतिप्रिय लोगों के बारे में बहुत सी मूल्यवान और दिलचस्प जानकारी लेते हैं। ताजिकिस्तान की स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से
भारत और ताजिकिस्तान के लोगों के बीच सांस्कृतिक सहयोग का एक नया युग शुरू हो गया है। बेशक ये एक विशेष चर्चा का विषय है, लेकिन इस ऐतिहासिक घटना के साथ भारतीय साहित्य के अध्ययन और अनुवाद के लिए गुणात्मक रूप से नई संभावनाएं जुड़ी हुई है। सन 2002 में नई सदी की शुरुआत में ताजिक भाषा में आधुनिक भारतीय लेखकों द्वारा सखू कथाओं का एक संग्रह प्रकाशित किया गया था, जिसमें 14 प्रसिद्ध लेखकों की अथरा कहानियां शामिल थी, जिनमें से ज्यादातर हिंदी में लिख रही थी। भारतीय लेखकों की कहानियों का मूल भाषा से सीधे अनुवाद करने का ये पहला प्रयास था। सन 2003 में भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की ताजिकिस्तान की आधिकारिक यात्रा के सम्मान में हबीबुल्लाह रजबोव ने उनके कविता संग्रह ए ड्रॉप ऑफ रेन का हिंदी से ताजिक में अनुवाद किया। इस संग्रह की बदौलत पता चला कि श्री वाजपेयी न केवल एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती बल्कि एक उत्कृष्ट कवि भी थे। भारतीय पाठक 7 से 8 वर्षों से उत्कृष्ट ताजिक लेखक सदरुद्दीन आइनी के कार्यों से परिचित है और ये प्रसिद्ध भारतीय लेखक वैज्ञानिक अनुवादक और यात्री राहुल संक्रित्यान के बदौलत है, जिन्होंने पिछले शताब्दी के 40वें दशक में मध्य एशिया के लोगों के साहित्य और इतिहास का गंभीरता से अध्ययन करना शुरू किया था। समकालीन ताजिक साहित्य में उनकी विशेष रुचि थी। सदरुद्दीन आइनी मिर्ज़ा तुरसुनज़ादा, जलाल इकरामी, सोतिम उलुगज़ादा और रहीम जलील की रचनाओं से परिचित होने के बाद उन्होंने सदरुद्दीन आइनी की रचनाओं का अनुवाद करना शुरू किया और सन 1948 में उनकी दो पुस्तकें ओदिना और उपन्यास दोखुंदा भारत में हिंदी में प्रकाशित हुई। उल्लेखनीय है कि राहुल संक्रित्यान सदरुद्दीन आइनी को मध्य एशिया का प्रेमचंद मानते हैं। आइनी के उपन्यास दोखुंदा और गुलामान न केवल कलात्मक है बल्कि ऐतिहासिक भी है। सोवियत संघ के दौरान मध्य एशिया से परिचित होने के लिए बेशक कई स्रोत और तरीके हैं, लेकिन इस उद्देश्य के लिए बिना किसी अतिशयोक्ति के सदरुद्दीन आइनी के कार्य सबसे उपयुक्त है। पुस्तक के प्रकाशन ने भी यही विचार व्यक्त किया है। इस प्रकार विभिन्न लोगों के मेल मिलाप के क्षेत्र में सभी नवाचारों के बावजूद साहित्य हमारी राय में लोगों के बीच आपसी समाज का सबसे विश्वसनीय साधन बना हुआ है। प्यारे श्रोताओं, अलग देशों के लोगों को एक साथ लाने और एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार बढ़ाने में साहित्य के महत्व के बारे में ताजिकिस्तान और भारत के साहित्य के उदाहरण में हमारी टिप्पणी आपने सुना। आप एक गाना सुनकर कार्यक्रम को जारी देंगे, हमारे साथ रहिए।

ताजिक सभ्यता इतिहास और संस्कृति बहुत प्राचीन और संपन्न है। ताजिक लोगों के लोक कला, संगीत और परंपराएं विदेशियों का ध्यान भी आकर्षित करता है। हमारे कार्यक्रमों के दौरान हमने कई हिंदुस्तानी कलाकारों से बात की थी जिन्होंने ताजिक संगीत में सफल हुए हैं। इस समय एक हिंदुस्तानी लड़की और उसकी ताजिक गानों के बारे में बात करेंगे जिसने ताजिक संस्कृति में रुचि रखी और मशहूर ताजिक कलाकारों और लोक गीतों को ताजिकिस्तान और हिंदुस्तानी दर्शकों के लिए पेश की। उसकी गानों में से एक है ताजिक लोक लोरी अल्लाह।

0: से विराज ताजिकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटी की पांचवी कोर्स की विद्यार्थिनी है। पांच साल पहले वो ताजिकिस्तान आई और यूनिवर्सिटी में ताजिक भाषा सीखने लगी। भाषा के अलावा ताजिक गाने भी उसको अच्छी लगी। इससे पहले हिंदुस्तान में गिफ्टी हिंदी और मलयालम में गाने गाती थी। उसकी अच्छी आवाज़ देख के उसके शिक्षिका ने गिफ्टी को ताजिक गाने पेश किया। ताजिक गाने गाना गिफ्टी को अच्छा लगा। वो कहती हर कार्यक्रमों में जो यूनिवर्सिटी और उसके बाहर आयोजित होते हैं वो भाग लेती है। गिफ्टी ने इस गाने के बारे में ये बात कही।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं गिफ्टी सिवराज एहान ताजिकिस्तान में अविसिना मेडिकल इंस्टीट्यूट में पांच कोर्स में पढ़ती हूँ। यहाँ इन पाँच सालों में मुझे हर साल ताजिक गाना का मौका मिला है और इसके लिए मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस करती हूँ। और इन सबका श्रेय जाता मेरी आवाज़ क्लास में सुनकर मुझे गाना का अवसर देने वाली मेरी ताजिक मैम श्रीमती सोहरा मैम। उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी से परिचय करवाया और यूनिवर्सिटी से मैं यहाँ के भिन्न भिन्न गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में भी भाग लेने का अवसर मिला। इनमें कुछ प्रोग्राम्स थे, नवरोज प्रोग्राम, यूथ डे, वुमेंस डे प्रोग्राम। इन प्रोग्राम्स में मैंने कई गाने गाए। उस में एक है गाना आला। यह एक प्रागा ललबी है जो एक माँ की ममता को दर्शाता। माँ ए अपने बच्चे को सुनाने से पहले अपनी मधुर आवाज़ में अपने बच्चे के कानों में गूंजती है। एक गाना एक माँ का उसके बच्चे के तरफ स्नेह को प्रकट करता। इस दुनिया में माँ के ज़्यादा उसके बच्चे को कोई और प्यार नहीं कर सकता। उसका स्नेह अमूल्य है। ये गाना दर्शा को भी बहुत पसंद आया। ये गाना मुझे यूनिवर्सिटी ने सुझाव दिया। शुरू शुरू में कुछ कुछ वाक्य पढ़ने और जाने में मुश्किल थे, लेकिन प्रैक्टिस के बाद गाना आसान निकला। जो ताजिक गाने में गए वे ज़ारे अर्थपूर्व है और यह गाने भी मज़ेदार है। नए एक राज्य में मेरे को अपनी कला को दर्शने मौका मिला, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और यह उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मुझे अवसर मिलते हैं।
0: आपको याद दिलाया कि कई साल पहले हमने अपने प्रोग्राम में गिफ्टी को आमंत्रित की थी और उन्होंने ताजिकिस्तान पर अपने नए गाने को पेश किया था। आप उस इंटरव्यू का एक पार्ट आपके लिए पेश करते हैं।

जैसा कि गिफ्टी ने बातचीत में हमारे साथ कहा, विभिन्न सरकारी प्रोग्राम्स में उसको ताजिक गानों को गाने की मौका मिलती है। इससे पहले गिफ्टी कई गाने पेश की थी, पर अलग गाना विशेष रूप से ताजिक लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि ये लोक गाना है, लोरी है, जिसको गाना आसान नहीं होता। और इसमें एक वीडियो भी बनाया गया था जिसमें गिफ्टी ताजिक पोशाक में ताजिक माँ की तरह लोरी गा के बच्चे को सुलाती है। ये बहुत दिलचस्प था और ताजिक लोगों के लिए बहुत अच्छा लगा कि एक विदेशी लड़की को उनके परंपराओं और रीति रिवाजों, संस्कृति और भाषा में दिलचस्पी है।

0: आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: نوسی پیارے سننے والوں، ریڈیو آواز تاجک کی ہندی بہا کی جاری ہے اور آپ کا سواگت ہے۔ ہمارے پرسارہ میں آپ سن سکتے عیسائی اور ودیشی سماچار، تاجکستان کے نیتک، سانسکرتک، ساماجک جیون کے بارے میں دلچسپ پائنیان، وشلیشن، وشیشنوں سے بات چیت۔ آج کی ذمہ داریاں میں اس پروگرام کے دیتی رام جو پروڈیوسر شیر علی والی شیر آپ کا سماچار بہار میں سواگت کرتے ہیں اور ہم مکھیہ خبروں سے شروع کریں گے۔ اس گھنٹے کی مکھیہ خبریں، تاجکستان اور بیلاروس بہراشتہ 4 روزی سہیوگ کو مضبوط کریں گے۔ تاجکستان کے پرتینی مندال نے شنگائی سہیوگ سنگٹھن کے سدسیہ دیشوں کے ادیوگ منتریوں کے ستر میں بھاگ لیا۔ انتراشٹریہ سنگٹھنوں کے منچوں پر تاجکستان اور آسٹریلیا کے سہیوگ پر وچار ومرش کیا گیا۔ یہ اور دوسری خبریں ہماری اس گھنٹے میں۔ تاجکستان گنرجہ کے وتی نینترن اور بشترچا رودھی ایجنسی تتھا بیلاروس گنرجہ میں مہا ابھیوجان کاریالے کے بیچ سن 2025-2026 کے لیے سہیوگ سمجھوتے کے کاریا بیان کے سنیوگ کاریہ یوجنا کے تحت پر ایک آن لائن کاریہکرم آیوجت کیا گیا۔ اس سمبندھ میں تاجکستان گنرجہ کے وتی نینترن اور بشترچا رودھی ایجنسی نے جانکاری دی۔ کاریہکرم کے دوران دونوں سنستھاؤں کے ذمہ دار ادھیکاری کاریوں نے بشتراچار کے ویروت سنگھرش اور اس پراوریتی کے روکا تھام میں ناگرک سماج کی بھومکا پر وچار ومرش کیا۔ یہ بھی ریکھانکت کیا گیا کہ بشتراچار کے خلاف لڑائی دونوں دیشوں کی راجانیتی کے ایک مہتوپورن اندیشہ ہے اور دونوں پکشوں نے اس کھیتر میں اپنے انوبھاؤ بشتراچار کے دور کو کم کرنے کے آدھونک طریقوں تتھا سماج کے آدھیک بھاگیداری پر وچاروں کا آدان پردان کیا۔ ساتھ ہی انتر ایجنسی سہیوگ مضبوط کرنے، نرکشن سامگری اور آپرادھیک معاملوں پر ویوہاری سہایتا پردان کرنے، سنیوگ کاریہکرموں کے آیوجن تتھا انیہ سہیوگ کھیتروں پر بھی چرچا کی گئی۔ کاریہکرم کے انت میں دونوں پکشوں نے کہا کہ تاجکستان اور بیلاروس کے بشتراچا رودھی نکایوں کے بیچ سہیوگ اچھ استر پر ہے اور اس کے آگے کے سدھیر کران ایوان وکاس کے لیے آوشیک قدم اٹھائے جائیں گے۔ تاجکستان کا پرتینی مندال تاجکستان گنرجہ کے ادیوگ اور نئی پروجوگی منتری شیر علی کبیر کے نیتریت میں شنگائی سہیوگ سنگٹھن کے سدسیہ دیشوں کے ادیوگ منتریوں کے بیٹھک میں شامل ہوئے جو 4 جون کو کرگزستان کے چوپون آتا شہر میں آیوجت کی گئی ہے۔ اس سمبندھ میں تاجکستان گنرجہ کے کرگز گنرجہ میں سیتھی دوتاوس نے جانکاری دی۔ ستر کے دوران پکشوں نے ادیوگک سہیوگ کے پرمکھ مدوں، ستھائی اتپادن، شری لنکاؤں کے نرمان، سنیوگ نویش پریوجناؤں کو بڑھاوا دینے تتھا آدھونک تکنیکوں کے کاریاویان اور ادیوگ کے آدھونکی کرام میں سہیوگ کو مضبوط کرنے جیسے وشیوں پر چرچا کی۔ تاجکستان کے ادیوگ اور نئی پروجوگکی منتری نے کہا کہ ورتمان پرستھتیوں میں شنگائی سہیوگ سنگٹھن کھیتری دیشوں کے بیچ ادیوگک اور نویش سہیوگ کے وستار کے لیے ایک مہتوپورن منچ کے روپ میں کاریہ کرتا ہے، جن کے پاس وشال سنسادھان، اتپادن سکشمتا تتھا ویگیانک تکنیکی سمبھاونائیں करेंगे। ये भी रेखांकित किया गया कि तजिकिस्तान अपनी तीव्र औद्योगिकी करा नीति के कार्यान्वयन के तहत स्थिर और सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करा है तथा हाल के वर्षों में देश में औद्योगिक उत्पादन का दोगुना विस्तार हुआ है। इस संदर्भ में खनन और धातु उद्योग, धातुकार, वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण तथा उच्च मूल्य वर्धित उत्पादन क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तजिक पक्ष ने रणनीतिक खनिज संसाधनों, विशेष रूप से दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के निष्कर्षण और प्रसंस्करण में देश की महत्वपूर्ण संभावनाओं पर भी जोर दिया, जिनकी हरित और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के विकास के दौर में बढ़ती मांग है। बैठक के दौरान शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के औद्योगिक निवेश परियोजनाओं के लिए एक डेटाबेस यानी सूचना बैंक स्थापित करने के तजिकिस्तान की पहल पर विशेष ध्यान दिया गया है। कार्यक्रम के तहत शिराली कबीर ने बिश्केक में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग प्रदर्शनी आलो टू ट्रेड इंडस्ट्री एक्सपो के उद्घाटन समारोह में भी भाग लिया, जिसमें 6 देशों के 90 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनी में तजिकिस्तान की औद्योगिक कंपनियों के उत्पादों तथा देश के निर्यात और निवेश क्षमता को प्रस्तुत किया गया। हसरा की राजधानी एना में तजिकिस्तान गणराज्य के ऑस्ट्रिया में असाधारण एवं पूर्णकारी राजदूत मनुचेर जोबिर और ऑस्ट्रेलिया गणराज्य के यूरोपीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संघीय मंत्रालय के राजनीति विभाग के निदेशक थॉमस म्यूलमान के बीच बैठक आयोजित हुई। तजिकिस्तान गणराज्य के दूतावास के अनुसार बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच बहुआयामी तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों के विकास की संभावनाओं पर चर्चा की गई। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ढांचे के अंतर्गत सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार विमर्श किया गया। तजिकिस्तान गणराज्य के स्विट्जरलैंड परिसंघ में राजदूत तथा जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में तजिकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि शराफ शेरअलीजोदा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गब्रियेसस के साथ मुलाकात की। तजिकिस्तान गणराज्य के दूतावास के अनुसार बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र की वर्तमान प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान किया तथा तजिकिस्तान और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच भविष्य में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने वैश्विक स्वास्थ्य और सतत विकास के समर्थन में संवाद और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को जारी रखने की अपनी तत्परता को भी दोहराया। तजिकिस्तान गणराज्य के मजलिसी नुमाइंदगान मजलिसी ओली के अध्यक्ष गियासुद्दीन अशुरजोदा ने विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इस संबंध में मजलिसी नुमाइंदगान मजलिस ओली ने जानकारी दी। बैठक के दौरान ये कहा गया कि सार्वजनिक व्यय और वित्तीय जवाबदेही मूल्यांकन रिपोर्ट तजिकिस्तान के लिए केवल एक अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन उपकरण नहीं है, बल्कि सार्वजनिक वित्त प्रबंधन की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करने, उपलब्धियों का आकलन करने और आगे के सुधारों की दिशा निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। ये भी उल्लेख किया गया कि पूर्ववर्ती यानी PEFA आकलनों के परिणाम बजट योजना, कोषागार प्रणाली के सुधार, सरकारी वित्तीय नियंत्रण को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक लेखा परीक्षा के विकास तथा बजटीय पारदर्शिता बढ़ाने जैसे व्यापक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण आधार बने हैं। इस वर्ष का PEFA मूल्यांकन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि पहली बार इसमें कई नए और महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। इनमें जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, जेंडर आधारित बजट निर्माण तथा स्थानीय स्तर के मूल्यांकन जैसे विषय शामिल है। ये भी रेखांकित किया गया कि तजिकिस्तान की संसद देश के सर्वोच्च प्रतिनिधिक और विधायी संस्थान के रूप में सार्वजनिक धन के उपयोग पर संसदीय निगरानी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि संसद में प्रतिवर्ष केवल राज्य बजट संबंधी कानून के मसौदे पर ही विचार नहीं किया जाता, बल्कि राजकोषीय रणनीति, मध्यम अवधि के आर्थिक विकास की संभावनाओं, सरकारी व्यय की प्रभावशीलता तथा सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के परिणामों का भी गहन विश्लेषण किया जाता है। चीन जनवादी गणराज्य के बीजिंग शहर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मंच बीजिंग के सुगंधित पहाड़ियां का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न देशों के सरकारी निकायों, पर्यटन संगठनों और व्यावसायिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ये जानकारी समिति ने दी है। फोरम के दौरान ताजिकिस्तान गणराज्य की सरकार के अधीन पर्यटन विकास समिति के प्रथम उपाध्यक्ष रुस्तम खुलमतियों ने ताजिकिस्तान के पर्यटन क्षेत्र के प्रतिस्पर्धात्मक विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने विशेष रूप से पर्वतीय और पर्वतारोहण पर्यटन, पारिस्थितिक और सतत पर्यटन के विकास तथा पर्यटन अवसंरचना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया। फोरम के प्रतिभागियों को गणराज्य के अद्वितीय प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और मनोरंजन संसाधनों से अवगत कराया गया, जो यात्रा और सक्रिय अवकाश के लिए व्यापक अवसर प्रदान करते हैं। फोरम के दौरान ताजिकिस्तान गणराज्य की सरकार के अधीन पर्यटन विकास समिति के प्रथम उपाध्यक्ष रुस्तम खुलमतियों और चीन जवादी गणराज्य के सांस्कृतिक एवं पर्यटन उप मंत्री गाओ जोंग के बीच एक बैठक आयोजित हुई। दोनों पक्षों ने पर्यटन क्षेत्र में ताजिक चीन सहयोग के विस्तार की संभावनाओं, निवेश आकर्षित करने, अंतर संस्थागत सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों के बीच पर्यटन प्रवाह बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त पहलों के कार्यान्वयन पर चर्चा की। प्यारे सुनने वालों, ये थी समय की ताज़ा खबरें जो हमने आपको प्रस्ताव किया। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहे।

यद्यपि 20वीं शताब्दी के 20वें दशक में भी ताजिक कवियों ने भारतीय विषय की ओर ध्यान दिया, लेकिन केवल मिर्ज़ा तुर्सुनज़ादा की शक्तिशाली कलम ही वो दे सकी जो उस समय के सरल और उच्च शिक्षित ताजिक पाठक भारत के बारे में जानना चाहते थे। पिछले शताब्दी के 50 के दशक से हमारे देश में भारतीय लेखकों की रचनाओं का गहन अनुवाद किया गया है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि उन वर्षों में अनुवाद केवल रूसी भाषा के माध्यम से किए जाते थे, क्योंकि ताजिकिस्तान में अभी तक अपने स्थानीय अनुवादक नहीं थे जो भारतीय भाषाओं को जानते थे कि मूल भाषा से सीधे अनुवाद कर सके। इस प्रकार रूसी भाषा ने भारत और ताजिक भाषाओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। ऐसी स्थिति में ऐसे अनुवादकों की आवश्यकता थी जो अधिकतम सटीकता और चमक के साथ कलात्मक छवियों, विचारों और कला के काम की अन्य विशेषताओं को व्यक्त कर सके। उच्च योग्यता ताजिक अनुवादक जैसे कि शरीफ शराफ, मुलो खानदव, अब्दुल जलील वसीदजोदा, हसन इरफोन, रहीम होशीम, फुलोत तोलिस, हिकमत रहमत और अन्य ने भारत में अपनी समृद्ध और बहुराष्ट्रीय साहित्य में अपने हमवतन लोगों की बढ़ती रुचि को देखते हुए सिर्फ 30 साल सन 1950 से 1980 तक भारतीय लेखकों द्वारा 300 से अधिक कहानियों, उपन्यासों, परियों की कहानियों और कविताओं का रूसी से ताजिक में अनुवाद किया गया। निसंदेह सबसे पहले कलात्मक शब्द के प्रतिभाशाली और व्यापक रूप से ज्ञात स्वामी के सर्वोत्तम कार्यों का रूसी में अनुवाद किया जाता था और फिर युवा और निश्चित रूप से भारत के कवियों और लेखकों की रचनाओं का अनुवाद किया जाता था। ताजिक अनुवादकों ने भी इस परंपरा को संरक्षित रखा और इस स्मृत शस्त्रागार से सर्वश्रेष्ठ का चयन करने का अवसर मिला। पचास और साठ के दशक में रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, मोहन सिंह और ख्वाजा अहमद अब्बास की रचनाओं का सर्वाधिक अनुवाद हुआ। उपयुक्त लेखकों में रविंद्रनाथ टैगोर और प्रेमचंद की रचनाएं हमारे देश में विशेष रूप से लोकप्रिय थी और अभी भी है। टैगोर ने अपने जीवन काल के दौरान अपनी मातृभूमि और विदेश दोनों में अविश्वसनीय लोकप्रियता प्राप्त किया। सन 1961 में रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म की शताब्दी ताजिकिस्तान सहित पूरी दुनिया में व्यापक रूप से मनाई गई। महान भारतीय कवि, लेखक, विचारक और कलाकार, पूरे पूर्व में पहला नोबेल पुरस्कार विजेता, हमारे देश में पहले से ही प्रसिद्ध था। सन 1940 की शुरुआत में टैगोर की कहानी वन हैप्पी नाइट ताजिक भाषा में लेनिन्स वे पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाद में उनकी अन्य रचनाओं का अनुवाद किया गया। ताजिकिस्तान में सन 1961 को रविंद्रनाथ टैगोर का वर्ष कहा जा सकता है। लगभग एक साल तक टैगोर की रचनाएं और उनके बारे में लेख हमारे देश में प्रकाशित होते रहे। ये इस वर्ष था कि ताजिक पाठक अपनी मूल भाषा में काबुलवाला, मोहमाया, नोटबुक, प्रतिशोध, संदेह जैसे आदि लेखक की कहानियों से परिचित हुए। हालांकि सबसे बड़ी घटना ताजिकिस्तान का सांस्कृतिक जीवन सबसे प्रसिद्ध टैगोर के उपन्यास गोरा का अनुवाद था, जहां पाठक को सबसे पहले औपनिवेशिक भारत में भारतीय समाज के आध्यात्मिक जीवन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। नाटक बालिदान का ताजिक भाषा में अनुवाद और प्रकाशन किया गया था। सन 2006 में टैगोर की 19 कहानियों का पहली बार हिंदी से ताजिक में अनुवाद किया गया, जिनमें जाज, वन नाइट, दाहलिया, हेमंती, बिग सिस्टर, स्ट्रेंजर, सजा और अन्य शामिल है। अनुवाद हबीबुल रजाबव, उस्मानव, रहमतुल्लोयेवा, सोलियेवा के साथ मिलकर किया गया था। इस संग्रह की प्रस्तुति दुशंबे के अलावा हमारे राष्ट्रपति इमाम अली रहमान की राजकीय यात्रा के दौरान 7 अगस्त 2006 को दिल्ली शहर में भी हुई थी। ये उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति इमाम अली रहमान और भारत के विदेश राज्य मंत्री श्री अहमद व्यक्तिगत रूप से इस पुस्तक के प्रस्तुतिकरण समारोह में उपस्थित थे। ये भारतीय प्रतिभा के प्रति आध्यात्मिक सम्मान का एक और प्रमाण है। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं को पढ़कर हम भारत के बारे में, इसके मेहनती और शांतिप्रिय लोगों के बारे में बहुत सी मूल्यवान और दिलचस्प जानकारी लेते हैं। ताजिकिस्तान की स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से
भारत और ताजिकिस्तान के लोगों के बीच सांस्कृतिक सहयोग का एक नया युग शुरू हो गया है। बेशक ये एक विशेष चर्चा का विषय है, लेकिन इस ऐतिहासिक घटना के साथ भारतीय साहित्य के अध्ययन और अनुवाद के लिए गुणात्मक रूप से नई संभावनाएं जुड़ी हुई है। सन 2002 में नई सदी की शुरुआत में ताजिक भाषा में आधुनिक भारतीय लेखकों द्वारा सखू कथाओं का एक संग्रह प्रकाशित किया गया था, जिसमें 14 प्रसिद्ध लेखकों की अथरा कहानियां शामिल थी, जिनमें से ज्यादातर हिंदी में लिख रही थी। भारतीय लेखकों की कहानियों का मूल भाषा से सीधे अनुवाद करने का ये पहला प्रयास था। सन 2003 में भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की ताजिकिस्तान की आधिकारिक यात्रा के सम्मान में हबीबुल रजबोव ने उनके कविता संग्रह ए ड्रॉप ऑफ रेन का हिंदी से ताजिक में अनुवाद किया। इस संग्रह की बदौलत पता चला कि श्री वाजपेयी न केवल एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती बल्कि एक उत्कृष्ट कवि भी थे। भारतीय पाठक 7 से अधिक वर्षों से उत्कृष्ट ताजिक लेखक सदुद्दीन आइनी के कार्यों से परिचित है और ये प्रसिद्ध भारतीय लेखक वैज्ञानिक अनुवादक और यात्री राहुल संक्रित्यान के बदौलत है, जिन्होंने पिछले शताब्दी के 40वें दशक में मध्य एशिया के लोगों के साहित्य और इतिहास का गंभीरता से अध्ययन करना शुरू किया था। समकालीन ताजिक साहित्य में उनकी विशेष रुचि थी। सदुद्दीन आइनी मिर्जा तुरसुनजोदा जलाल इक्रोमी सोचिम उलुगजोदा और रहीम जलील की रचनाओं से परिचित होने के बाद उन्होंने सदुद्दीन आइनी की रचनाओं का अनुवाद करना शुरू किया और सन 1948 में उनकी दो पुस्तकें ओदिना और उपन्यास दोखुंदा भारत में हिंदी में प्रकाशित हुई। उल्लेखनीय है कि राहुल संक्रित्यान सदुद्दीन आइनी को मध्य एशिया का प्रेमचंद मानते हैं। आइनी के उपन्यास दोखुंदा और गुलामान न केवल कलात्मक है बल्कि ऐतिहासिक भी है। सोवियत संघ के दौरान मध्य एशिया से परिचित होने के लिए बेशक कई स्रोत और तरीके हैं, लेकिन इस उद्देश्य के लिए बिना किसी अतिशयोक्ति के सदुद्दीन आइनी के कार्य सबसे उपयुक्त है। पुस्तक के प्रकाशन ने भी यही विचार व्यक्त किया है। इस प्रकार विभिन्न लोगों के मेल मिलाप के क्षेत्र में सभी नवाचारों के बावजूद साहित्य हमारी राय में लोगों के बीच आपसी समाज का सबसे विश्वसनीय साधन बना हुआ है। प्यारे श्रोताओं, अलग देशों के लोगों को एक साथ लाने और एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार बढ़ाने में साहित्य के महत्व के बारे में ताजिकिस्तान और भारत के साहित्य के उदाहरण में हमारी टिप्पणी आपने सुना। आप एक गाना सुनकर कार्यक्रम को जारी देंगे, हमारे साथ रहिए।

ताजिक सभ्यता, इतिहास और संस्कृति बहुत प्राचीन और संपन्न है। ताजिक लोगों के लोक कला, संगीत और परंपराएं विदेशियों का ध्यान भी आकर्षित करता है। हमारे कार्यक्रमों के दौरान हमने कई हिंदुस्तानी कलाकारों से बात की थी जिन्होंने ताजिक संगीत में सफल हुए हैं। इस समय एक हिंदुस्तानी लड़की और उसकी ताजिक गानों के बारे में बात करेंगे जिसने ताजिक संस्कृति में रुचि रखी और मशहूर ताजिक कलाकारों और लोक गीतों को ताजिकिस्तान और हिंदुस्तानी दर्शकों के लिए पेश की। उसकी गानों में से एक है ताजिक लोक लोरी अल्लाह।

0: से वराज ताजिकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटी की पांचवी कोर्स की विद्यार्थिनी है। पांच साल पहले वो ताजिकिस्तान आई और यूनिवर्सिटी में ताजिक भाषा सीखने लगी। भाषा के अलावा ताजिक गाने भी उसको अच्छी लगी। इससे पहले हिंदुस्तान में गिफ्टी हिंदी और मलयालम में गाने गाती थी। उसकी अच्छी आवाज़ देख के उसके शिक्षिका ने गिफ्टी को ताजिक गाने पेश किया। ताजिक गाने गाना गिफ्टी को अच्छा लगा। वो कहती हर कार्यक्रमों में जो यूनिवर्सिटी और उसके बाहर आयोजित होता है वो भाग लेती है। गिफ्टी ने इस गाने के बारे में ये बात कही।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं गिफ्टी सिवराज एहान ताजिकिस्तान में अविसिना मेडिकल इंस्टीट्यूट में पांच कोर्स में पढ़ती हूँ। यहाँ इन पाँच सालों में मुझे हर साल ताजिक गाना का मौका मिला है और इसके लिए मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस करती हूँ। और इन सबका श्रेय जाता मेरी आवाज़ क्लास में सुनकर मुझे गाना का अवसर देने वाली मेरी ताजिक मैम श्रीमती सुहरा मैम। उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी से परिचय करवाया और यूनिवर्सिटी से मैं यहाँ के भिन्न भिन्न गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में भी भाग लेने का अवसर मिला। इनमें कुछ प्रोग्राम्स थे, नवरोज प्रोग्राम, यूथ डे, वीमेंस डे प्रोग्राम। इन प्रोग्राम्स में मैंने कई गाने गाए। उस में एक है गाना आला। यह एक प्रातः ललबी है जो एक माँ की ममता को दर्शाता। माँ ए अपने बच्चे को सुनाने से पहले अपनी मधुर आवाज में अपने बच्चे के कानों में गूंजती है। ये गाना एक माँ का उसके बच्चे के तरफ स्नेह को प्रकट करता। इस दुनिया में माँ के ज्यादा उसके बच्चे को कोई और प्यार नहीं कर सकता। उसका स्नेह अमूल्य है। ये गाना दर्शा को भी बहुत पसंद आया। ये गाना मुझे यूनिवर्सिटी ने सुझाव दिया। शुरू शुरू में कुछ कुछ वाक्य पढ़ने और जाने में मुश्किल थे, लेकिन प्रैक्टिस के बाद गाना आसान निकला। जो ताजिक गाने में गए वे जारे अर्थपूर्व है और यह गाने भी मज़ेदार है। नए एक राज्य में मेरे को अपनी कला को दर्शने मौका मिला, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और यह उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मुझे अवसर मिलते हैं।
0: आपको याद दिलाया कि कई साल पहले हमने अपने प्रोग्राम में गिफ्टी को आमंत्रित की थी और उन्होंने ताजिकिस्तान पर अपने नए गाने को पेश किया था। आप उस इंटरव्यू का एक पार्ट आपके लिए पेश करते हैं।